दान गुरमत दान बुद्ध विवेक राहत रक्षा दान खालस जी नो श्री हरिमंदर साहिब अमृतसर सरोवर जी दे इशनान श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दीदार मेले बुलारे श्री अकाल तख्त साहिब जी बाबा टाले जी संतोख सर जी विवेक सर जी राम सर जी काल सर जी

पार हुए सम लेंगे स्वामित की कर्पूरा पासार डंका बाजे फते का नेकल अवतार चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र भुगे दुगालं ब्रना सिद्ध आलम स्वरूपे सदा अंग संगे अपंग देखते को फते न सुरभेत अजनान।

चंद्रमा ते सीतल न सूर ते तपत तेज इंद्र सोना राजा भव भूम को भरत है। शिव से तपस्याद ब्रह्मा से न वेद चारि सनत कुमार सी तपस्या न अनत है। ज्ञान के विहीन काल फांस के अधीन सदा जुगन की चौकरी फिराए।

पुराण कित सिमृत समूहन के होए होए बिताए है। मोन दी मदार कित असुनी कुमार कित अंसा अवतार कित काल बस भय है। पीरे ओ पिकांबर कित गन न परत एत भूम ही तह के फिर भूम ही मिलाए है। जोगी जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी छत्र ही की छाया कई कोस लो चलत है। बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश बड़े बड़े राजन के द्रव को दलत है। मानसे महीप ओदलीप कैसे छत्रधारी

अनेक दो बजी कपट वेश बोधति अनेकता निभावत है शीस को कह भयो मल्ल जो पिगाढ़त अनेक दंड सो दो न दंडौत अस टांग अति तीस को कहा भयो रुकी जो बेडार्यो रहो उर्ध मुख मन ते न मुड ने हो रायो आद ईस को कामना अधीन सदा दामना प्रवीण एक भावना विहीन कैसे पावे जगदीश को शीस पटकत जाके कान में खजूरा धसे मुंड छटकत मित्र पुत्र हो के शोक सो आंख गोचरैया फल फूल को भजैया सदा बान को भ्रमैया और दूसरो न भोग सो कहा भयो भेड़ जो खसत शीस वृक्षन सो माटी को बचैया बोल पूछ लीजे जो कसो कामना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक भावना विहीन कैसे भेट पर लोक सो नाचो ही करत मोर दादर करत शोर सदा घन घोर घन करो ही करत है एक पाए ठंडे सदा बन में रहत वृक्ष।

ज्ञान के विहीन महादान में न हो जलीन भावना यकीन दिन कैसे तरत है। जैसे एक सौगी कहूँ जो किया बराकी बने सब हूँ संन्यास भेष बन के दिखावई कहूँ पौन हारी कहूँ बैठ लाए तारी कहूँ लोभ की खुमारी सो अनेक गुण गावई कहूँ ब्रह्मचारी कहूँ हाथ पैर लगावे बारी कहूँ दंडधारी होई का लोक न भ्रमावई कामना अधीन पर्यो नाचत है नाचन सो ज्ञान के विहीन कैसे ब्रह्म लोक पावई। पंच बार गीदर पुकार पर शीतकाल कुंचर अगत अनेक दा पुकार ही कहा भयो जो पिकल वत्र लियो कांसि बीच चीर चीर चोर डाकुठार सो मारही कहा भयो फांस डार बूढ़ो जड़ गंग धार डार डार फांस ठग मार मार डारही डूबे नरक धार मूढ़ ज्ञान के बिना विचार भावना विहीन कैसे ज्ञान को विचारही। ताप के सहित जो पिपाइये अतापनाथ तापना अनेक तन घायल सहत है जाप के किए ते जो पिपायत अजाप देव भूतना सदीव तुही उच्चरत है। नभ के उड़त जो पे नारायण पाइयत अनल आकाश पंछी डोल बो करत है आग में जरत गत राण की परत कर बताल के पास क्यों।

साफी मानस की जात सब एक पहचानबो। करता करीम सोई रास करहीम ओई दूसरो न भेद कोई भूल भ्रम मानबो। एक ही कि सेव सब ही को गुरुदेव एक एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जानबो। देहु राम सीत सोई पूजाओ निवाज ओई मान सब एक पया अनेक को भ्रमाओ है। देवता अदेव जश गंधर्व तुरक हिंदू न्यार न्यार।

एक नैन एक कान एक देह एक बान खाक बाद आतस ओ आव को रलाओ है। अल्लाह एक सोई पुराण ओ कुरान हुई एक ही स्वरूप सब एक ही बनाओ है। जैसे एक आग ते कनु का गोट आग उठे न्यारे न्यारे हो के फिर आग में बिलाहेंगे। जैसे एक धूर ते अनेक धूर पूरत है धूर के कनु का फिर धूर ही समाहेंगे। जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है पान के तरंग सब पान ही कहेंगे। जैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट हुए ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे। केते कछ माश केते उनको करत भाष केते अच वच हो सपच उड़ जाएंगे। केते नव बीज अच पच को करेंगे भज केते को प्रतच हो बचाए खाए जाएंगे। जल कहाँ थल कहाँ गगन के गौन कहाँ काल के बनाए सब काल ही जबाहेंगे। तेज जीव तेज में अतेज जैसे तेज ऋण ताही ते उपाय सब ताही में समाहेंगे। कुकत फिरत के तुरोवत मरत के ते जल में डुबत के ते आग में जरत है। के ते गंग वासी के ते मदीना मक्का निवासी के तक उदासी के ब्रह्माई फिरत है। करवत सहत के ते भूम में गड़त के ते सुआ पे चढ़त के ते दुख को भरत है। ज्ञान में उड़त के ते जल में रहत के ते ज्ञान के विहीन जग जा रही मरत है। सोध हर देवता विरोध हर दानव बोध हर बोधक प्रबोध हर जापसी घस हर चंदन लगाए हर जुआचार बुझ हर बाहन चढ़ाए हर लापसी गा हर गोरन मनाए हर मड़ी मटली हर भीतन लगाए हर छापसी गाय हर गंधर्व बजाए हर किन्नर सब पच हर पंडित तपन।

अच्छा विभूत न जन्म न मरण न पर न व्याधय खंडे प्रचंडे अदंडे असाधे न नेहंग न गेहंग सनेहंग सनाथे उदंडे अमंडे प्रचंडे प्रमाथे न जाते न माते न सत्रे न वितर सभूते भविखे भवाने अचित्रे नारायंग नरंगंग न रूपंग नरेखंग न लोभंग न चोभंग भूतंग अपेखंग न सतरंग न पितरंग न नेहंग न गेहंग सदेवंग सदा सर्व सर्वत्र सनेहंग न कामंग न क्रोधंग न लोभंग न मोहंग जो नियछयाद अद्वय अजोहंग न जन्मंग न मरणंग न वर्णंग न व्याधंग न रोगंग न शोकंग भय निर्विखादंग अछेदंग अभेदंग कर्वंग कालंग खंडंग भंडंग प्रचंडंग पालंग न तातंग न मातंग न जातंग न कायंग न नेहंग न गेहंग न भर्मंग न भायंग न रूपंग न भूपंग न कायंग न कर्मंग न त्रासंग न प्रासंग न भेदंग न भर्मंग सदेवंग सदा सिद्ध विरधंग स्वरूपे नमो एक रूप।

देह दुखं कहूँ औखधि रोग के शोक सुखं कहूँ देव विद्या कहूँ दैत बाने कहूँ यक्ष गंधर्व के नरक हानि कहूँ राजसी साधकी तामसी हो कहूँ जोग विद्या धरे तापसी हो कहूँ रोग रहता कहूँ जोग जुगतं कहूँ भूम के भुगत मैं भरम भुगतं कहूँ देव कन्या कहूँ दानवी हो कहूँ जच्छ विद्या धरे मानवी हो कहूँ राजसी हो कहूँ राज कन्या कहूँ श्रेष्ठ के पृष्ठ के ऋष पन्या कहूँ वेद विद्या कहूँ व्योम बाणी कहूँ कोक की काव कथा कहानी कहूँ अत्र सारं कहूँ भद्र रूपं कहूँ मद्र बाणी कहूँ छुद्र स्वरूपं कहूँ वेद विद्या कहूँ काव रूपं कहूँ चेष्टाचार चित्रं स्वरूपं।

बाल कर्मं कहूं ज्वास रूपं जरा रहत देहं कहूं नेह देहं कहूं त्याग गृहं कहूं जोग भोगं कहूं रोग रागं कहूं रोग हर्ता कहूं भोग त्यागं कहूं राजसाजं कहूं राजरितं कहूं पूर्ण प्रज्ञा कहूं परम प्रीतं कहूं अरबी तोर की पारसी हो कहूं पहलवी पस्तवी संस्कृति हो कहूं देश भाग्या कहूं देव बाने कहूं राज विद्या कहूं राजधानी कहूं मंत्र विद्या कहूं तंत्र सारं कहूं जंत्र रीतं कहूं शस्त्र धारं कहूं होम पूजा कहूं देव अर्चा कहूं पिंगला चारणी गीत चर्चा कहूं बीन विद्या कहूं गान गीतं कहूं मलेज भाख्या कहूं वेद रीतं कहूं नृत्य विद्या कहूं नागबानी कहूं गारडू गूड कथा कहानी कहूं अक्षरा पक्षरा मक्षरा हो कहूं वीर विद्या अभूतं प्रभा हो कहूं छैल छाला धरे छत्रधारी कहूं राज

तेज अंश जगात करदास देव हरता सनात आसन अडोल अनभूत करम दाता दयाल अनभूत धर्म। जय शत्रु मित्र नहीं जन्म जात जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र मात जय करम वरम नहीं धर्म ध्यान जय नेह गेह नहीं ब्योत बान। जय जात पात नहीं शत्रु मित्र जय नेह गेह नहीं चिहन चित्र जय रंग रूप नहीं राग रेख जय जन्म जात नहीं भरम भेख जय करम भरम नहीं जात पात नहीं नेह गेह नहीं पितृ मात जय नाम थाम नहीं वर्ग ब्याद जय रोग शोक नहीं सत्र साध जय त्रास वास नहीं देह नास जय आध अंत नहीं रूप रास जय रोग शोक नहीं जोग जुगत जय त्रास आस नहीं भूम भुगत। जय काल ब्यारे कट्यो न अंग अच्छा स्वरूप है अभंग जय नेत नेत उचरंत वेद जय अलख रूप कथत कतेब। जय अलख रूप आसन अडोल जय अमित तेज अक्षय अतोल जय ध्यान काज मुंजन अनंत कई कल्प जोग साधत दुरंत। तन सीत घाम बरखा सहंत कई कल्प एक आसन बितंत कई जतन जोग विद्या विचार साधंत तद पावत न पार। कई ऊर्ध बाह देसन भ्रमंत कई ऊर्ध मध पावक झुलंत कई सिमृत शास्त्रत उचरंत वेद कई कूक काव कथत कतेब। कई अगन होत्र कई बवन हार कई करत कूट मृत को आहार कई करत साग पै पत्र भक्ष नहीं तदब देव होवत प्रत्यक्ष। कई गीत गान गंधर्व रीत कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत कहूँ वेद रीत जग याद करम कहूँ अगन होत्र कहूँ तीरथ धर्म। कई देश देश वाखर टंत कई देश देश विद्या।

होत कई देव कर्म कई करत वीर विद्या विचार नहीं दवतास पायत न पार। कहूँ राज रीत कहूँ जोग धर्म कही सिमृत शास्त्रत उचरत सो करम न्योली याद करम कहूँ हस्त दान कहूँ अश्वमेध मख को बखान। कहूँ करत ब्रह्म विद्या विचार कहूँ जोग रीत कहूँ व्यर्थ चार कहूँ करत जक्ष गंधर्व गान कहूँ धूप दीप कहूँ अर्घ दान। कहूँ पितृ करम कहूँ वेद रीत कहूँ नृत्य नाच कहूँ गान गीत कहूँ करत शास्त्र सिमृत उचार कही भजत एक पग निराधार। कई नेह देह कई गेह वास कई भ्रमत देश देशन उदास कई जल निवास कई अगन ताप कई जपत उर्ध लटकंत जाप। कई जपत जो कल्पं व्रजंत नहीं तदपतास पायत न अंत कई करत कोट विद्या विचार नहीं तदप दिष्ट देखे मुरार। बिन भगत सगत नहीं परत पान बहु करत होम अर जग दान बिन एक नाम एक चित्त लीन भोकुटो सर्व धर्मा विहीन। त्वा प्रसाद तोटंग छंद जय जम्पह जुंगण जूह जुअंग भय कंपह मेर पयाल भोंग तप तापस सर्प जलेर धनंग धन उचरते।

आद गतंगन खेद अवेद अछेद नरंग जय चार चतुर्दिश चक्र फिरंग जय राग न रंग न रेख रुखंग जय शोक न भोग न जोग जुगंग भू भंजन गंजन आद सिरंग जय बंदत देव देव नरंग गण किन्नर जछ भुजंग रचे मण माणक मोती लाल सुचे अन भंज प्रभा अन गंज वृतंग जय पार न पावत पूर मतंग अनखंड स्वरूप दंड प्रभा जय जम पद वेद पुराण सभा जय

विनाथ है, समस्त सिद्ध वृद्ध दा सदीव सर्व सत है। अनाथ नाथ नाथ है, अभंज भंज है सदा, गंज गंज गंज है सदीव सिद्ध सुध सिद्ध वृद्ध दा। अनूप रूप स्वरूप है, अछिज तेज मानिय सदीव सिद्ध शुद्ध दा प्रताप पत्र जानिय। नराग रंग रूप है, न रोग राग रेग है, अधोग दाग दग है, अभूत ब्रह्म वेग है। न तात मात जात है, न पात चिहन वर्ण है, अधेग शेख भेक है सदीव विश्वभरण है। विश्वंबर विश्वनाथ है, विशेक विश्ववरण है, जिमी जमान के विखे सदीव करम भरम है। अद्वेख है अभेक है, अलेख नाथ जानिए सदीव सर्व ठौर में।

न कर्म न धर्म न भरम मैं बताइए, अगंज आदि देव है कहो सो कैस पाइये। जिमी जमान के विखे समस्त एक ज्योत है, न घाट है न बाढ़ है न घाट बाढ़ होत है। नहान है न बान है समान रूप जानिए, मकीन और मकान अप्रमाण तेज मानिए। न देह है न गेह है न जात है न पात है, न मंत्र है न मित्र है न तात है न मात है। न अंग है न रंग है न संग है न साथ है, न दोख है न दाग है न द्वैग है न देह है। न सिंह है न श्यार है न राव है न रंग है, न मान है न मौत है न साक है न संग है। न जच है न गंधर्व है न नर है न नार है, न चोर है न साव है न साह को कुमार है। न नेह न गेह है न देह को बनाव है, न छल है न छिद्र है न

अंग है, न रंग है, न संग है, न साध है, प्रिया है, पवित्र है, पुनीत है, प्रमाद है, न सीध है, न सोच है, न घ्राम है, न घाम है, न लोभ है, न मोह है, न क्रोध है, न काम है, न देव है, न दैत है, न नर को स्वरूप है, न छल है, न छिद्र है, न छिद्र के विभूत है, न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न द्वैख है, न भेद है।

अछेद छेद है सदा गंज गंज गंज है अभूत अभेक है बलिया रूप राग रंग है। न द्वैख है न भेक है न काम क्रोध कर्म है न जात है न पात है न चित्र चिहन वर्ण है। बेअंत है अनंत तेज जानी है भूम अभिज है सदा।

राग रूप है न रूप रूप रेख रार है न हाव है न भाव है न दाव को प्रकार है। गजाधपि नराधपि ग्रंथ सेव है सदा सिद्धस्पति तपस्पति वनस्पति जपस सदा। अगस्त आद जे बड़े तपस्त भी विशेखिये बेअंत बेअंत बेअंत को ग्रंथ पाठ देखिए। अगाध आद देव की अनाद बात मानिए न जात बात मंत्र मित्र सत्र स्नेह जानिए। सदैव सर्वलोक के कृपाल ख्याल में रहे तुरंत द्रोह देह के।

सनक आसन के सनंदन पावई ना सेव। जच के नर मछ मानस मुर्ग उर्ग पार, नेत नेत पुकार ही सेव सक्र ओम उचार। सर्वस्वत बतार के दर जाप ही जह जाप, आद देवा गाद तेज नाद मूर्ता ताप। जंत्र मंत्रण आवई कर तंत्र मंत्रण कीन, सर्व ठौर रहयो बिराज धिराज राज प्रवीन। जच गंधर्व देवदानो न ब्रह्म क्षत्रिय माहे, वैसन के बिखे बिराज सूत्र भी वह नाहे। गुड़ गौड़ न भीर भी कर ब्रह्म सेख स्वरूप, रात दिवस न मद और

दुष्ट दंडन पुष्ट खंडन आदि देव अखंड भूम का जले थले मह जपत जाप अमंड श्रेष्ठ चार विचार जेते जानिए सब चार आदि देवा पार श्री पद दुष्ट पुष्ट प्रहार अन्नदाता ज्ञान ज्ञाता सर्व मान महेंद्र वेद व्यास करे कई दिन कोट इंद्र उपेंद्र जन्म जाता कर्म ज्ञाता

सत दुर्वा वर्त त्यागल जग चतुर काल प्रधान। ध्याय ध्याय थके महामन गाय गंधर्व पार, हार हार थके सबे नहीं पाइये तह पार। नारद आदिक वेद व्यास मुन महान अनंत, ध्याय ध्याय थके सबे कर कोट कष्ट दुरंत। गाय गाय थके गंधर्व नाच पछर पार, सोत सोत थके महासुर।

कवन रिष्ट को पुष्ट है कहाँ सृष्ट को विचार, कवन सृष्ट को भ्रष्ट है कहो सकल विस्तार। दोहरा कहाँ कर्म को कर्म है कहाँ भ्रम को नाश, कहाँ चेतन की चेष्टा।

सहति सन्नाहन अष्ट प्रवाहन बोरणिवाहन तेज तुनंग जय जय हो श्री महासुर मर्दन भूमाकाश पताल जनंग चाचर चमकारण चिच्छुरहारण धूम धुंकारण द्रप मथे दाढ़ विवृतंते जोग जयंते मर्ज मथंते गूढ़ कथे करम प्रणासन चंद प्रकाशन सूरज प्रति

निवारण धम धारण तेज प्रकर खंड तुंद तबे दुख दोख दहंती ज्वाल जयंती आद नाद काद छे शुद्धता समर्पण तर्क वितर्कण तपत प्रतापण जपत जिवे जय जय होसी शास्त्र प्रकरखण आद अनिल अगाध भे चंचला जखंगी अलग भुजंगी तुंद तुरंगण तिच्छ

प्रसाद और बिना पार पावे हिंगुला हिमालय जावे गोर गर तेजी गुण गावे तेरे नाम है जोग जोग साध पौन साधना की तेग बांधे अरब के अरबी आराधे तेरे नाम है। फरा के फिरंगी माने कंधारी गुरे सी जाने पच्छम के पच्छम ही पछाने निज काम है मरहटा मंगेली तेरी मान सो तपस्या करे देड़ वैद्य रंगी पहचाने धर्म धाम है। बंग के बंगाली फिर हंग के फिर अंगा वाली दिल्ली के दिल वाली तेरी आज्ञा में चलत है रूह के रूहले मांग देश के मंगेले पीर बंग सी बुंदेले बाब पुंज को मलत है। गोखा गुण गावे जिन मचीन के शीस न्यावे देवत ध्याय दुख देह के दलत है जिन्हें दोह ध्यायो तिन्हें पूर्ण प्रताप पायो सर्व धन धाम फल फून सुफलत है। देव देव दान को सुरेश दानवान को महेश गंग दान को अभेश कहियत है रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण और काहु बे न दीन साध दीन कहियत है। पाइये न पार तेज पुंज में अपार सर्व विद्या के उदार है अपार कहियत है हाथी की पुकार पल पाछे पहुँचत ताहि चिट्ठी की चिंगार पहले ही सुनियत है। केते इंद्र द्वार केते ब्रह्मा मुख चार केते कृष्णा अवतार केते राम कहियत है केते सस राशि केते सूरज प्रकाशी केते मुंडिया उदासी जोग द्वार दहियत है। केते महादीन केते व्यास प्रवीण केते कुमेर कुलीन केते जश कहियत है करते है विचार बिना पूर्ण को पावे वार्ता हित अपार निराधार लहियत है। पूरन अवतार निराधार है न पार वार पाई न पार पे अपार के बखानी है अद्व अविनाशी परम पूर्ण प्रकाशी महारूप हूँ के राशि है अनासी के मानी है। जंत्र हूँ न जात जाय की बाप हूँ न मायदा की पूर्ण प्रभा की सुछटा के अन मानी है। तेज हूँ को तंत्र है के राजसी को जंत्र है के मोहनी को मंत्र है निजंत्र के जानी है। तेज हूँ को तर है गराजसी को सर है शुद्धता को घर है सिद्धता की सार है कामना की खान है साधना किसान है विरक्तता की बान है के बुद्ध को उदार है। सुंदर स्वरूप है के हूपन को हूप है रूप हूँ साधन को रचक है गुणन को पहार है। सिद्ध को स्वरूप है के बुद्ध को विभूत है के क्रुद्ध को अभूत है के अच्छे अविनाशी है काम को कुनिंदा है के खूबी को दिहंदा है गनीमन गरिंदा है के तेज को प्रकाशी है। काल हूँ के काल है के सतरन के साल है के मित्रन को पोकत है के वृद्धता की वासी है जोग हूँ को जंत्र है के तेज हूँ को तंत्र है के मोहनी को मंत्र है के पूर्ण प्रकाशी।

जान को बचैया है, ईमान को दिवैया है, जंजाल को कटैया है, कि कामना को कर है, तेज को प्रचंड है, अखंडन को खंड है, महीपन को मंड है, के श्री हन नर है, विश्व को भरण है, गया पदा को हरण है, के सुख को करण है, के तेज को प्रकाश है, भाई न पार पार अवार हूं को पार, जाको की जत विचार सो विचार को निवास है, हिंगुला हिमालिका वह बसी है, लभ्य था वे पूर्व बिना पार बावे, सत्य अनाश है, देवन को देव महादेव हूं के देव है, निरंजन अभेवनाथ अद्व अविनाशी है, अंजन विहीन है, निरंजन प्रवीण है, के सेवक अधीन है, कन्हैया जम जाल के, देवन के देव महादेव हूं के देवनाथ, भूम के भुजैया है, मुहैया महाबाल के, राजन के राजा महासाज हूं के साजा, महाजोग हूं के जोग है, धरैया द्रुम छाल के, कामना के कर है, के बुद्धता को हर है, के सिद्धता के साथी है, के काल है कुचाल के, छीर कैसी छीरावत छाज कैसी छतरा नेर, छपा कर कैसी छप काल इंद्र के कूर के, हंस नि सिहारू महीरा सि हुसन बाद, गंगा कैसी धार चली सातो सिंधु रूल के, पारसी पलाऊ गढ़ रूपा के सी रामपुर, सोरासी सुरंगाबाद निक रही झूल के, चंपासी चंदेरी कोट चांदनी सी चांदागढ़, कीरत तिहारी रही माल दिसी फूल के, फटक सी कैलाश कमाऊ गढ़ कांसीपुर सी

पाया ते भागहीण जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए धृग जीवै धृग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन

बिनती चौपाई हमरी करो हाथ दै रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तव चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सभय तुम गावो आप हाथ दै मोहे बचावो

साज संगरिया पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर ना ध्याऊं जो भर चाऊं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारी तारी है चुन चुन सत्र हमारी मारी है आप हाथ दे मुझे उबरिए मरण काल का त्रास नवरिए ऊजो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुझ जू करिय रक्षा राख लिहो मोहे राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद।

दैत जच्छन उपजायो आद अंत एकै अवतार सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तसही को हमारी सकल प्रजा जन आप सवारी सिवकण को सिवगुण सुख दियो सत्रण को पल मोह पद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत छींटी ते कुंचर यस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछान घट घट के पट पट की जा।

पूर्ण सुबराता खिलभिक सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को क्षय करता श्री अवधुज भय दयाला पूर्ण करता।

अपना जान मुझे प्रत परिय चुन चुन सत्र हमारे मरिय देग तेग जग मैं दऊ चल राख आप मुहे और ना दलै तुम मम करो सदा प्रतपारा तुम साहिब मैं दास तिहारा ज्ञान आप ना मुझे नवाज आप करो हमरे सब काज तुम हो सब राजन के राजा आपे आप गरीब नवाजा दास जान कर कृपा करो मुहार परा मैं आन द्वार तुहे अपना

राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भाकत नेत स्वर्ग बा स्वर्ग पर करा सगरी पुरी समेत चौपई जो एह कथा सुने अर गावे दुख पाप तह निकट न आवे बिशन भगत किए फल होई आद ब्या छुए सकै न कोई सम सत्रह सैस पचावन हाड़ वदी प्रथम सुख दावन तौ प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा भूल परी लौ लिहो सुधारा दोहरा नेत्र तुम के चरण तर सत द्रव तीर तरंग श्री

नाख तरे नहि आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक न जान्यो। श्रीयस पान कृपा तुमरी कर मैं ना कहो सब तोहे बखान्यो। दोहरा

भैव चिंद फ्रै सिर भार भैव च राजा धर्म दुआ भैव सूरज भैव चंद कह करोड़ी चलत न अंत।